इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टच.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बहुत संकरी और पतली गली को देखा है? एक ऐसी तंग गली जिसमें मुश्किल से केवल एक ही व्यक्ति सीधा खड़ा होकर निकल सकता है. अगर उस गली में कोई इंसान अपने साथ दो बड़े बड़े झोले लेकर या किसी दूसरे साथी का हाथ पकड़कर एक साथ निकलना चाहे तो वह कभी पार नहीं हो पाएगा. वहां से गुजरने की पहली शर्त ही यही है कि आपको बिल्कुल अकेले और सीधा होना पड़ेगा. अध्यात्म का मार्ग भी ठीक वैसे ही एक संकरी गली है, लेकिन हमारी तरकीबें बड़ी अजीब हैं. हम मंदिर, मस्जिद या ध्यान में बैठते तो हैं, ऊपर से ऐसे दिखाते हैं कि हम ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह लीन हैं, लेकिन हमारे भीतर कहीं ना कहीं कोई सांसारिक चालाकी, कोई स्वार्थ या कोई वासना छिपी रहती हैं. हम सोचते हैं कि इस भीतरी चोर को कोई देख नहीं रहा. कबीर साहब आज हमारे इसी आत्मछल का पर्दाफाश कर रहे हैं. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र. कबीर सेरी साकड़ी चंचल मनवा चोर, कबीर सेरी साकड़ी चंचल मनवा चोर, गुन गावे लेलिन होई कछु एक मन में और.

0: कछुन कछु एक मन में और रे साधो, कछु एक मन में और। श्रोताओं, कबीर साहब साधना के मार्ग की संकीर्णता और मन की चालाकी को उजागर करते हुए कहते हैं, कबीर सेरी साकड़ी, वह जो परमात्मा के मिलन की सेरी यानी गली है, वह अत्यंत साकड़ी यानी तंग और संकरी है। वहाँ अहंकार और कपट के साथ प्रवेश करना असंभव है। चंचल मनुआ चोर, पर विडंबना देखिए, इस गली में प्रवेश करने वाला जो हमारा मनुआ यानी मन है, वह बड़ा चंचल है। स्वभाव से एक चोर की तरह है, जो लगातार ईश्वर की नज़रों से बचकर अपनी वासनाओं को तृप्त करने की फिराक में रहता है। यह चोर मन क्या चालाकी करता है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, गुण गावे लेलिन होई। बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि यह मन परमात्मा के गुण गा रहा है, कीर्तन कर रहा है और भक्ति में पूरी तरह लैलीन यानी डूबा हुआ है। कछु एक मन में और, लेकिन कबीर साहब उसके भीतर की चोरी पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि ऊपर की इस लैलीनता के पीछे इसके मन में यानी हृदय के किसी अंधेरे कोने में कछु और ही चल रहा होता है। कोई मान प्रतिष्ठा की चाह, कोई धन का लालच या किसी से बदला लेने की भावना छिपी होती है। यह दोहा चित्त की एकाग्रता और पूर्ण प्रामाणिकता का महासूत्र है। वेदांत दर्शन में परमात्मा को अंतर्यामी कहा गया है, यानी वह जो हमारे वचनों को नहीं बल्कि हमारी नियति और भीतरी चेतना को देखता है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि परमात्मा को शब्दों या कीर्तनों के बाहरी आडंबर से रिझाया नहीं जा सकता। जब तक मन में द्वैध है यानी मुख पर हरि का नाम और भीतर संसार का काम, तब तक आप उस संकरी गली को पार नहीं कर सकते। उस गली को पार करने के लिए मन का पूरी तरह से शुद्ध, पारदर्शी और निष्कपट होना अनिवार्य है। जहाँ थोड़ी भी और यानी दुविधा या वासना बची है, वहाँ परमात्मा का प्रकाश ठहर ही नहीं सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा आंखें बंद करके अपने इस चंचल मनवा चोर की तलाश कीजिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी की भलाई करते हैं या जब हम समाज को अपनी धार्मिकता दिखाते हैं, तो क्या हमारे भीतर सचमुच निस्वार्थ प्रेम होता है, या फिर उस गुण गाने के पीछे हमारे मन में कछु और यानी कोई छुपा हुआ स्वार्थ काम कर रहा होता है? आज कोशिश कीजिए इस भीतरी चोर को पकड़ने की। अपने आचरण में और अपनी प्रार्थना में पूरी तरह ईमानदार बनिए। जो बाहर है वही भीतर भी होने दीजिए। मुख और मन के इस फासले को मिटा डालिए। जब आपका मन पूरी तरह खाली और निष्कपट होकर उस राम नाम में लीन होगा, तभी वह इस संकरी गली को पार कर पाएगा, उस अनंत चैतन्य सत्ता से एक हो सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम।
1: आप सुन रहे हो रेडियो मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
2: बात तथागता, तुना ध्यास, तुना अभ्यास गहरा खोल, तुना या खराना सोधना आड़े, राग लोभ खार ज्या ज्या आडकाठी बनी उन्हात त्यासले कापत घ्या आणि उभा राहत घ्या. बा तथागता शाक्य कोलियासना पाणीनं संकट मिटणं हाही आनंद वार्ता तुना लागे उनी म्हणशिनी तुना सोधना परवास थांबी का? हां बिलकुल नाही. तू विचार करा पलगडी आखो भिडना नवा उमेद थै सोधलेवाले खरांना शोध गुंता ते समजी लेवा गुंता. राजा बिंबी सारूना तू न देख न रूप दखी तू भटकंतीवाला नैश्य असं बोलना. तुला देखना शरीरना 32 लखने त्या बलदंड दंडे त्या एक लाईन थै रचेल दात आणि सोनासारखी कातडी. बट्ट राजाना माईक सोडाव रस्ता बट्टा सुखेतुना पायशे लोयन लेथीन त्यावर. तथागता त्यांना बोलावरे बोलना जगमा जगमा दूग बानगडी तंटा रावा बाजत माले त्या सुखनी आवनी. राजा बिंबिसार आय आय की भयान हुई गया अर्थुन आई ज्ञान पूर्व व्हावा बाजत माले भेट असं बोलना. भटकंतीले इंगेल सिद्धार्थ भृगुरीशीना आश्रमे घ्या पिढी जात तप साधनाले डोळ्या भरी दक वय सालिले आलार कलामना आश्रमे भी तू घ्या. उद्दकापुर उद्दका रामपुत्ताले भेटना बरा माठाना इचार करी गौतमना प्रवास सुरू झाला. त्यांनी दख समाधी रस्ताना शिक्षण प्राणायाम ध्यान समाधी बैरागीना कडक अभ्यास तू कया शरीरले त्रास दिना काटासवर जपाड थंडीना दिन मा कुडकुडना उन्हायामा ऊनमा आंगले बाह्य पावसायामा पाणीमा भिजना तू खुदले थकाड पण या समदा रस्ता शरीरले थकाडणारा मन मातल्या वासना असले मूठ माती देवा वाचते कठीण ज्ञान पै ध्यान पै गंजच दुर्ण्या. बा तथागता तुले भेटा गुंता विचारसन्या तत्वज्ञान्या चर्चा कितल्या कृषींना सांगे तूच आपली काढात मंतर तंतर करम कुभाण आंधी श्रद्धा आणि श्रद्धा मातली दरी आणि भेदरेषा निसर्गमान न्याऱ्या न्याऱ्या गोष्टीसनी वनारी पुंजा ऋषीसनं तत्वज्ञान सांगस खरं सोदा गुंता पुरावा जोजेल तवयच खरं खरं मानाई त्या गुंतास दोन रस्ता खराना तू सांगात एक ज्ञान दुसरा रस्ता अनुमान. बाकीना भट्टा बरमना भोप्या करम कुभाण आंधी सरदना थैथयाट भट्टा येडा चाया आणि दात काया ज्यांना त्यांना मन जोगत्या बामनेसन्या पुराण पोथ्या तुना ज्ञान रस्तामा तुले बिनकामन्या वाटण्यात येद मातला मंतर आणि पुराणेस मातलं तंतर तुना ध्याने वायबार. बात तागता तुना बराबरीना कालमा पुरण काश्यप होता आक्रिया वाद मांडणारा करमना आत्माना वरे काहीच परमान व्हत नाही असं सांगणारा हा त्या करानी दुसऱ्यांना हातेकरांनी हत्या करानी दुसऱ्यांना हातेकरांनी चोऱ्या मारा दरोडा टाकाना पराई बाईशी बैजबरी खोटं बोलानं या भट्टास मातीन पाप लागत नाही आत्माले आणि पुण्य बी लागत नाही मराबाजत काहीच मागे राहत.

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। जब खुशी की बात करते हैं तो खुशी का इंडेक्स भी बना लिया हमने। जी हाँ, हमने देखा कि हर रोज हमारी खुशी का जो लेवल है वो कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। तब इस पूरी श्रृंखला में हमने कोशिश की है कि ये बातें देखें जो हमारी जिस पर हमारी खुशी निर्भर कर रही थी। हमने देखा सिचुएशंस थे, लोग थे, लेकिन एक बात जो सामने आई वो ये कि ना तो वो लोग या वो सिचुएशंस मुझे खुशी दे रही थी, ना चीज़ें मुझे खुशी दे पा रही थी, बल्कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है। और अगर आपको पिछली कड़ी याद हो, हमने बात की थी कि मेरा जो थॉट है, मेरा जो संकल्प है, मेरी जो सोच है, वही बहुत सारी चीज़ें तय करती है। हमने एक पूरा की पूरी साइकिल देखी थी, उसी साइकिल को थोड़ा और आज आगे बढ़ाते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अगर मेरी जो हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो अगर अपनी मेरी ओन क्रिएशन है तो वो कैसे संभव है कि मैं अपने उस इंडेक्स को स्टेबल रख पाऊं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी। अगर पिछले कड़ी को देखते हैं तो थॉट जो था वो एक डेस्टिनी तक लेके जा रहा था। अगर हम इस पर पहले भी कई बार बात की है कि हमारे जो एक सोच है या हमारा संकल्प है वो हमारी डेस्टिनी तय करता है। कई पड़ाव हमने बीच में से गुजरे थे, उसमें से डेस्टिनी तक अभी समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे मेरा भाग्य तय कर सकता है। एक छोटा सा रिकैप हम चाहेंगे कि आपसे ले लें कि किस तरह से मेरी थॉट की जो पूरी प्रोसीजर है वो चल रहा होता है।
1: जबकि सिचुएशंस हमारे सामने आते या लोगों का व्यवहार हमारे सामने आता या हमारे जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आता तो हम उसका जिम्मेवार किसी न किसी और को ठहरा देते और फिर हम कहते मेरे भाग्य में ही ये है। जैसे ही मैंने ब्लेम किसी और पर रखा, सिचुएशन पर, व्यक्ति पर, अपने भाग्य पर या फिर परमात्मा पर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ओवर। ये मेरे साथ हो रहा है लेकिन इसका जिम्मेवार कोई और है। जब वो कोई और ठीक हो जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। सो समवेयर वट एवर वॉज हैपनिंग इन माई लाइफ, गुड और बैड, इट वॉज समवन एल्स दैट वॉज रिस्पॉन्सिबल। तो जब हम उस थॉट के साथ जीवन जी रहे थे तो कहीं ना कहीं फिर मेरे कंट्रोल में तो मेरा जीवन नहीं है, इट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय सिचुएशंस एंड पीपल आउटसाइड। तो अगर मेरा जॉब बहुत अच्छा चल रहा है, प्रमोशन, सब कुछ अच्छा, पैकेज अच्छा, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। घर पे सारा चीजें टाइम टू टाइम आ रही थी, फैमिली वॉज वेरी हैप्पी। क्यों? क्योंकि सिचुएशंस वर फेवरेबल। जैसे ही सिचुएशंस में परिवर्तन आया तो मेरा वो इंडेक्स गिर गया। जैसे आज हम फाइनेंशियल इंडेक्स को भी देखें, वो डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन है। ग्लोबल लेवल पर अगर पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल कुछ भी ऊपर नीचे होता है, वो इंडेक्स चेंज होता है। तो सारा दिन चेक क्या किया जाता है कि सिचुएशन सिनारियो में क्या हो रहा है, बिकॉज वी नो कि इसका हमारे फाइनेंशियल इंडेक्स पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपने खुशी के इंडेक्स पर भी उसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल दिया और हमने समझा ये तो ठीक है, ये तो नेचुरल ही है कि जब बाहर सिचुएशन फेवरेबल
0: तभी मैं खुश,
1: बाहर सिचुएशन ऊपर नीचे तो मैं अंदर डिस्टर्ब।
0: तो सिस्टर शिवानी, तभी तो ये सब कुछ हो रहा था जब मेरे को, मुझे पता ही नहीं था कुछ और बात, जब मैं एक ही तरीके से जीना सीख रहा था कि सिचुएशन ठीक है, लोग ठीक हैं या कोई भी चीजें मेरे पास हैं तो मुझे खुशी मिल रही है, तो मैं उन्हीं को तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी फिर।
1: एब्सोल्युटली। तो एक है उनको कंट्रोल करना, उनका ध्यान रखना, और एक अपना ध्यान रखना। तो मैं रखना तो अपना ध्यान चाहती हूँ, मैं खुशी चाहती हूँ। आज आस्क एनीवन एंड दे वांट वन थिंग, यू टेल देम वन थिंग जो आपको चाहिए, दे विल नॉट से गाड़ी बंगला, दे विल से हैप्पीनेस। लेकिन वो हैप्पीनेस लाने के लिए इतनी सारी चीजें चाहिए। लेकिन हमने क्या सोचा कि मेरी हैप्पीनेस इन सारी चीजों पर डिपेंडेंट है, तो मैंने यहाँ ध्यान रखने की बजाय जहाँ वो क्रिएट होती है मैंने वहां ध्यान रखना शुरू कर दिया जिनकी वजह से मैंने सोचा ये क्रिएट होती है। आप मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं खुश होंगे, ये मैंने अपने अंदर प्रोग्रामिंग कर दी। तो मेरा सारा एम ऑब्जेक्टिव क्या होने लगा, आप किस तरह से मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ जिससे आप मेरे से अच्छी तरह से बात करेंगे। इट डजंट मीन कि मैं आपके लिए अच्छा नहीं करूँ, बट उसके पीछे का इंटेंशन क्या था।
0: इंटेंशन
1: ये है मैं आपसे अच्छी तरह से बात करूंगी, भले मैं कंफर्टेबल हूँ अंदर वो करने से नहीं, पर मुझे वो करना है जो आपको ठीक लगेगा, क्योंकि आपको ठीक लगेगा तो आप खुश होंगे, आप खुश होंगे तो मैं खुश होंगी। सो एवरीथिंग वॉज बींग डन फॉर हैप्पीनेस, विच वॉज ओके फॉर सम टाइम, इट सीम्ड टू बी गोइंग ओके। लेकिन जैसे जैसे सिचुएशंस और लोगों में परिवर्तन की गति फास्ट होती गई तो समवेयर आई थॉट के दिस इज गोइंग टू फास्ट,
0: वो मेरे बस में नहीं रहने लग गया,
1: तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहने लग गया. एंड आई सॉ कि माय इंडेक्स वाज क्रैशिंग एवरी डे, पर मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया. ऐसे क्या करे, सिचुएशन ही ऐसी है तो खुशी तो कम होनी ही है. तब हमने स्वीकार कर लिया जीवन दर्द में जीना. आज मेजोरिटी, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस, हमने अपने दर्द को, दर्द इन एनी फॉर्म, दर्द कुड बी चिंता, इट कुड बी फियर, इट कुड बी एंग्जाइटी, इट कुड बी स्ट्रेस, एंगर, व्हाटएवर, हम उसको स्वीकार करके उसको नेचुरल समझ के जीवन जीने लगे. और हमने अपने आप को कहा ये नेचुरल है. क्यों? क्योंकि बाहर सिचुएशन ठीक नहीं है. तो फिर क्या होगा, क्योंकि मेरे मन की स्थिति इन सब पर डिपेंडेंट है, ये सब ठीक नहीं है तो ये ठीक कैसे हो सकता है. तो हमने उसको स्वीकार करके अपना जीवन व्यतीत करने थे. चाहिए थी खुशी, स्वीकार कर लिया दर्द को, और फिर दर्द में ही जीवन जीने लगे. और फिर सारा दिन अपने आप से कहते रहे खुशी चाहिए, खुशी चाहिए. जो चाहिए उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा ना.
0: इनफैक्ट यहाँ एक बात अगर हम देखें, सब लोगों का जो पूरा व्यवहार है, जो जो जो कुछ भी हो रहा है, जब उन्होंने ये सोचा या हमने ये सोचा हुआ था कि इन पर डिपेंड कर रही है मेरी खुशी, तो मैं उन पे काम कर रही थी. See, I kept on working, yeah. and I'm still working.
1: Which is absolutely fine.
0: No,
1: but who
0: saying.
1: kept on working?
0: I.
1: But I in pain.
0: Ah, because I was looking for happiness.
1: Yes. So once I'm in pain and I keep on working, whatever work I do, uska net result
0: pain will be.
1: तो ये जब हमने स्पिरिचुअलिटी ने सिर्फ इतना ही फोकस शिफ्ट किया, स्पिरिचुअलिटी हमारी थिंकिंग के प्रोसेस को एक नई दिशा देती है, मेडिटेशन फिर उसको एम्पावर करता है कि उसको कैसे करना है. तो जब स्पिरिचुअलिटी हमें ये नॉलेज दिया कि थॉट आपकी क्रिएशन है, फिर थॉट से फीलिंग, फीलिंग से एटीट्यूड, ओके दैट इज आफ्टर दैट, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात थॉट्स मेरी क्रिएशन है. बिफोर दिस तो आई वॉज नॉट इवन लिविंग इन दैट अवेयरनेस. आई थॉट आपकी वजह से थॉट क्रिएट हो रहा है, तो थॉट मेरी क्रिएशन है या थॉट जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो आप पर डिपेंडेंट है. तो समवेयर माय थॉट्स वर नॉट इन माय कंट्रोल, माय थॉट्स वर इन द कंट्रोल ऑफ.
0: इनफैक्ट अभी भी अगर हम देखें, अगर हम केयरफुल नहीं रहते हैं तो कुछ भी होते ही वो थॉट क्रिएट हो जाता है.
1: तो हम
0: अवेयर नहीं है,
1: क्योंकि हम अवेयर नहीं है उस चीज के लिए. तो स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा माइंडसेट को चेंज किया, वेरी बिग माइंड सेट, कि आज दिन तक आई वॉज इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन एंड नाउ आई टेक द कंट्रोल इन माई हैंड. अब ये हुआ कि हाँ मुझे सब कुछ करना है, सिचुएशन आज फेवरेबल है, कल हो सकता है सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर नीचे भी हो जाए, लेकिन माई स्टेट ऑफ माइंड इज स्टिल इन माई कंट्रोल. दिस वन थिंग जस्ट चेंजेस everything.
0: This actually feels very good. Again, I've come back to feeling. This thought creates very good feeling, you know, very strong feeling. But abhi bhi ho nahi pa rahi hai cheez.
1: Wo aise, it's not magic, you know. Jab aap ek mindset se saalon se chalte aa rahe hain, this is the process which has to begin. Hame aaj se hi sirf ek dhyan rakhna hai. Situations aa rahe hain, लोग आ रहे हैं, व्यवहार सब कुछ करते करते करते जैसे सब चीज का ध्यान रख रहे हैं, सिर्फ साथ साथ ध्यान रखते जाएं कि यहाँ जो थॉट क्रिएट कर रहा है वो कौन क्रिएट. जस्ट ऑब्जर्व वन डे, जस्ट डोंट डू एनीथिंग. उसको चेंज भी नहीं करने की कोशिश करो, वो नेगेटिव है तो कोई बात नहीं नेगेटिव है, लेकिन पहली चीज तो ये अवेयरनेस चाहिए कि वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्रिएट कौन कर रहा है. क्रिएट, आई एम क्रिएटिंग द थॉट. जस्ट नाउ my job is in, you know, at stake, yeah, my salary packages, yeah, my boss is shouting at me, everything is happening around me, lekin jo main thoughts create kar rahi hu, I just have to watch, ye fir bhi main hi create kar rahi
0: hu. Wohi main keh rahi hu ki jab feeling itni strong ho chuki hai, jaise suppose mere boss ne shout kiya mujhe, mujh pe shout kiya, bahut strongly shout kiya, matlab jo bhi sabke samne, the feeling of, you know, betrayal, feeling of being hurt, फीलिंग ऑफ फील, यू नो कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, सब कुछ वो जो वो फीलिंग है उससे वो थॉट क्रिएट होता गया.
1: नहीं नहीं नहीं, वो जो थॉट क्रिएट की कि सबके सामने उन्होंने मुझे इंसल्ट, सी द थॉट, सबके सामने मुझे इंसल्ट की, मैंने इतना सिंसियरली काम किया था फिर भी मुझे इस तरह से डांटा, दीज आर थॉट्स विच आई. अब सिनारियो, बॉस ने मुझे डांटा, सबके सामने डांटा, वन थॉट इज इतना सिंसियरली मैंने काम किया था, सबके सामने मुझे डांट दिया, यही बात तो अलग से भी की जा सकती थी। पहली बात, मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी इस तरह से। यहाँ तो मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लो ना, इन्होंने तो कभी खुश होना ही नहीं। दिस इज माई थॉट्स विच आर गेटिंग क्रिएटेड, आई एम क्रिएटिंग इट। बॉस अभी वही है, ही हैज डन वॉट ही हैड टू डू, उन्होंने अपना रोल प्ले कर लिया। उस सीन को देख कर मैंने जो क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट की वो ये, और जैसे ये वाली थॉट क्रिएट की तो हाउ विल आई फील,
0: बट एक
1: ऑब्वियसली वेरी लो। जो आपने अभी सारी बातें बोली ना, बिट्रेयल, ये दीज आर नॉट फीलिंग्स, दीज आर थॉट्स। ये थॉट क्रिएट, फीलिंग इज ओनली फीलिंग लो, वेरी डिप्रेस्ड, उमंग उत्साह नहीं है, या फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड। फीलिंग कैटेगोरिकल नहीं होती है, ये आपने कैटेगराइज किया था अभी, बिट्रे किया, इंसल्ट किया, मैं हर्ट हो गई, यू नो, ये फील, ये सारा कुछ थॉट्स है। वी काइंड ऑफ टेंड टू मिक्स अप बिटवीन द टू ऑफ देम कि ये थॉट है या फीलिंग है। थॉट इज वेरी स्ट्रक्चर्ड, और जिस तरह की, जिस क्वालिटी की आप थॉट क्रिएट करोगे, फिर यू विल ईदर फील गुड और यू विल फील बैड। फीलिंग्स आर नॉट स्ट्रक्चर्ड, थॉट्स आर स्ट्रक्चर्ड। फीलिंग्स में बहुत सारे ऐसे
0: fluid, actually, feelings are
1: आपको ऐसे फीलिंग्स अलग अलग नहीं आएगी, ये इंसल्ट की फीलिंग है, ये बिट्रेयल की फीलिंग है, ये हर्ट, ना, इट्स ओनली फीलिंग लो और इट्स फीलिंग गुड गुड, एंड दिस लो एंड हाई विल डिपेंड ऑन ये जो स्ट्रक्चर्ड थॉट्स आपने क्रिएट किया। अब उसी सिनारियो में आप कोई और क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट करो कि मैंने जो किया, फर्स्ट आई चेक माई वर्क कि वो सिंसियर था या नहीं। हो सकता है उन्होंने ठीक से नहीं परसीव किया, या हो सकता है उनका मूड ठीक नहीं है। जब उनका मूड ठीक हो सकता है, हो जाएगा, मैं जाकर बात कर लूंगी। हाँ, उन्होंने सबके सामने मेरे को डांट दिया, लेकिन अब मैं कैसे स्टेबल रहूं। सी वन थिंग व्हाट हैपेंस इज, उन्होंने डांट दिया, देन आई फील लो, उसके बाद मैं उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देती हूँ। एंड जस्ट वो जो पूरे चार लोग साथ में बैठे होंगे, उनके सामने अपना इमेज वो करने के लिए मैं उनके बारे में जाकर उन सारे लोगों, तो एक्चुअली इंसल्ट वो नहीं करते हैं मेरी। जब एक सिनारियो में आप आपको देखो कि किसी ने मुझे डांटा, मेरी कोई इंसल्ट नहीं होती है उस समय। आई थिंक कि मेरी बहुत इंसल्ट हो गई है उस समय। जो लोग यहाँ बैठे हैं और जो देख रहे हैं उस सीन को, उनको भी पता है हु इज़ द वन हु इज़ इन कंट्रोल एंड हु इज़ द वन हु हैज़ गॉन आउट ऑफ कंट्रोल। तो वो किसके बारे में क्या इमेज क्रिएट करते हैं, वो उनकी अपनी परसेप्शन पे डिपेंड होगा। आई फील इंसल्टेड माई सेल्फ, आई फील लो कि मुझे वॉट दे फील, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। मैं सोचती हूँ कि सबके सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सब लोग मेरे बारे में वही सोचेंगे जो पहले मैं अपने बारे में सोचूंगी। और अगर मैं स्टेबल रही, माई फेस डजेंट शो एनी डिस्टर्बेंस, आई डोंट क्रिटिसाइज हिम, my body language is absolutely smooth, you will see everyone there is smooth. Lekin main upar niche ho gayi, disturb ho gayi, main unke bare mein galat bolne lagi, phir wo mere bare mein ab sochenge. To ye meri jo soch bahut fast chalti hai us time jab ye scenario create hota hai, unhone daanta wo mere control mein nahi hai totally, lekin ab kya kya hona hai uske baad, wo sara kiske control mein hai, wo sara mere control mein hai.
0: फीलिंग लाइक आपने बोला कि क्रिएट थॉट्स, जब उन्होंने डांटा, ठीक है, तो उसमें लो फील नहीं करके आप ये कह रहे हैं कि अगर स्टेबल रह पाते हैं तो बाकी लोग जो, क्योंकि मेरे लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, यू नो, पूरे
1: मेरे लिए एक्चुअली ज्यादा पहले ये होना चाहिए मैं क्या सोचूंगी, लोग क्या सोचेंगे इज रियली सेकेंडरी। एक्चुअली आज हम बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, एंड वी कुड प्रॉब्ली मेस अप विद आवर लाइफ
0: बिकॉज ऑफ वी बीन डूइंग दैट,
1: कि लोग क्या सोचेंगे। कई बार कोई दो लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कहेंगे गुस्सा तो करना ही है, अगर चुप रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, लोग सोचेंगे ये तो बिल्कुल, इसके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है, इसको तो, लोग क्या सोचेंगे इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं किस चीज से गुजरता हूँ वो मेरी सोच पर डिपेंड करता है। अगर इफ आई एम फीलिंग लो टुडे, आप मेरे बारे में कितना भी अच्छा सोचो, कैन यू मेक मी फील गुड? नो, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स इस बात पर डिपेंडेंट है लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, आई डोंट नो हाउ मच दैट मैटर्स, मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ,
0: लोग एक्चुअली वही सोचने लगेंगे,
1: एक्चुअली इट डजंट रियली मैटर, क्योंकि आप जो सोचेंगे आप वो एनर्जी क्रिएट करेंगे, जो एनर्जी आप क्रिएट करेंगे वो आपके एनवायरमेंट में फैल जाएगी, एंड वो एनर्जी दूसरे की सोच को क्रिएट करेगी। पहले मैं तो अपने बारे में अच्छा सोचूं ना, आप मेरे बारे में अच्छा सोचे या नहीं सोचे How does that matter? That doesn't build my self-esteem. Lekin mere liye kyun zyada important hai ki log kya sochenge? Kyunki meri khushi logon ki soch par dependent hai. That is what I thought. Ki agar aap mere bare mein acha sochoge,
0: to
1: fir aap mere se acha baat karoge. Fir aap mere se acha baat karoge, to mujhe khushi hogi. To maine zyada ye socha ki log kya sochenge. Jab mujhe ye samajh mein aaya ki main kya sochungi, us par meri खुशी डिपेंडेंट है तो सारा फोकस किस पर चला जाएगा कि मैं क्या सोच रही हूँ. डेस्टिनी कैसे क्रिएट हो रही है. बॉस ने मुझे डांटा, ठीक है, डांटा इसलिए क्योंकि कोई गलती हो गई है. अब मेरी थॉट्स कैसी वाली चलनी शुरू होती है, कितनी भी मेहनत करो ये तो डांट देते हैं. मैं आगे से कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि नया भी करो तो भी यहाँ से तो कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं है. इन्होंने तो फिर भी डांटना, माइट एज वेल मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, बिना बात के इतनी मेहनत करो, फिर लोगों के सामने कुछ मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं है. नाउ दिस इज द क्वालिटी ऑफ थॉट. अब गए अपने डेस्क पे और काम करने बैठे, कैसा काम होगा.
0: फीलिंग इतनी लो हो चुकी है. You know, हम ये बात कर रहे थे ना कि हमारी जो थॉट
1: है, नाउ व्हाट विल बी माय डेस्टिनी, बिकॉज़ नाउ विद दैट लो क्वालिटी ऑफ थॉट एंड दैट लो फीलिंग आई एम सिटिंग एंड वर्किंग ऑन माय कंप्यूटर और ऑन माय फाइल और व्हाटएवर विद दीज थॉट्स कि यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये तो कुछ भी करो और काम कर रहे हैं, वो काम कैसा होगा. वो एनर्जी कैसी होगी जो रे. अब जरूर गलती निकलेगी, पहले नहीं भी थी तो, क्योंकि इतनी लो स्टेट में अगर काम करेंगे तो वो वर्क एफिशिएंसी पे तो मेरा इफेक्ट पड़ने ही वाला है.
0: वही कहा जाता है कि जब डांट पिट रही हो तो हाथ हिलने लगते हैं, नहीं.
1: अब वो लो एफिशिएंसी में मैंने काम किया तो पहले वाले काम में गलती नहीं भी होगी ना, तो इस वाले काम में तो गलती जरूर निकल आएगी. अब मैं हर्ट फील हुई हूँ, अब मैं वो काम लेकर फिर से बॉस के पास जाती हूँ. व्हेन आई एम हर्ट कैन आई लाइक द बॉस, आई हेट द बॉस फॉर व्हाट द बॉस हैज डन. तो जैसे ही मैं बॉस के सामने गई, मेरी वाइब्रेशंस कैसी गई, आई डोंट लाइक यू, ये एनर्जी आई ट्रांसमिट. काम भी मैंने वो सबमिट किया, उस काम में भी हो सकता है अब तो डांट जरूर पड़नी पड़े,
0: लेकिन मेरे मन में ये आएगा कि नाउ ही इज गोइंग टू डू इट अगेन.
1: यस. So I create the thought which this creates for me. The same thing what I could do is ke daant padi hai, whatever reason jiske liye unhone daanta, I have to still go back to my work. It may not be very easy that time, kyunki jab daant padti hai to I have got into the habit of wo dejected thoughts ko feel karna. If I can, it's not ego, but if I can go back to my desk and say okay, let me get back to the work all over again. पहले अगर गलती हुई थी तब तो और भी important कि I go back with focus. And अगर गलती नहीं थी फिर भी डांटा गया था, I still go back, चलो मैं फिर से इनको यही करके देता हूँ. Let's see, अब इस बार वो ठीक लगता है कि नहीं. But I have to put a full stop to those negative thoughts उस time. और फिर उस stability से अगर मैं काम करूँ, अगर मैं hurt नहीं हूँ तो मैं वो senior के प्रति भी बहुत गलत क्वालिटी के थॉट्स नहीं क्रिएट करूंगी. आई कैन से आई कैन अंडरस्टैंड ये उनके अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं या अपना आज वो डिस्टर्ब्ड होंगे या जो भी, आई कैन जस्ट वेव इट ऑफ. तो जो हम कहते हैं कि औरों के प्रति गुड विशेज रखना, तो वो औरों के प्रति गुड विशेज कब रख सकेंगे, जब हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड नहीं है.
0: अपनी स्टेबिलिटी तो फिर भी रख पाऊँ कि ठीक है उनकी कोई वजह होगी कि मैंने किया, लेकिन उनके प्रति शुभ भावनाएं,
1: शुभ भावना क्रिएट नहीं करनी होती है. यू डोंट हैव टू से सिट एंड से उनके साथ बहुत अच्छा हो जाए, दिस इज नॉट शुभ भावना. शुभ भावना सिर्फ ये है कि आप स्टेबल हैं.
0: मैं
1: तो एटलीस्ट आपसे कोई नेगेटिव क्वालिटी ऑफ थॉट दूसरे के प्रति नहीं जा रही है, दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ. जैसे कि परिस्थिति आई और परिस्थिति गई और परिस्थिति ने मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, दैट विल बी स्टेबिलिटी ना. मौसम बदला फिर बदला, लेकिन मैं उस मौसम को क्रॉस कर सकी, दैट इज स्टेबल. कि वो बदला लेकिन आई वॉज स्ट्रांग इनफ चेंज करने की. इसी तरह वो बदले, उनका व्यवहार बदला, लेकिन उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा. इट इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, आई कैन ट्राई इट आउट.
0: आई हैव उनके साथ उसी एनर्जी के साथ दोबारा बात करूं.
1: इट्स ओनली वन थॉट अवे. इट्स जितना ये हमें मुश्किल लग रहा है करना, एक्चुअली ये एक थॉट अवे है. अगर हम उनसे ठीक से बात नहीं करना चाहें, हम सालों साल नहीं कर सकते हैं, वो भी ठीक है. क्यों मैं बात करूं, बात करना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन है मैं क्यों बात करूं आपसे, जब आपने मेरे से अच्छी तरह से बात नहीं की तो मैं आपसे क्यों अच्छी, दैट इज द क्वेश्चन.
0: दैट्स व्हाट आई से ना, व्हेन वी से आई रिमेन अनअफेक्टेड, इज इट आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड.
1: दैट इज नॉट अनअफेक्टेड, दैट इज डीप हर्ट. दैट इज डीप हर्ट, दैट इज नॉट अनअफेक्टेड. जो आप कह रहे हैं कि कैन आई, मेनी पीपल हैव ट्राइड दिस, कि कैन आई गो बैक एंड टॉक टू दैट पर्सन नॉर्मली, इट इज वेरी वेरी वेरी इजी. कितने दिन के बाद करना है?
0: वेरी इजी यू सेड.
1: यस, आई वाज गोइंग
0: टू से वेरी डिफिकल्ट.
1: बात करना बहुत इजी है. वो जो पीरियड बीच में है जब तक के लिए आप अपने आप को कन्विंस कर सको कि इट इज ओके, आई कैन गो बैक. सी, इफ यू हैव सेड समथिंग टू मी जिससे आई एम लाइक टोटली वेरी वेरी लो, एंड आई कैन कीप सेइंग टू माई सेल्फ, इनसे तो अब मैं फिर से कभी बात नहीं करूंगी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो आई गिव दोज थॉट्स टू माई सेल्फ. इट्स नॉट कि मैं इनसे बात कर नहीं सकती, इट्स जस्ट दैट मैं नहीं करूंगी.
0: आई डोंट फील लाइक,
1: यस, मैं नहीं करूंगी क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया कि मैं नहीं करूंगी. तो करना मुश्किल नहीं है, लेकिन डिसीशन लेना कि मुझे करना है या नहीं. तो नॉर्मली क्या होता है, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नहीं करना, मैं बॉस से बात नहीं करूंगी, मैं हस्बैंड से बात नहीं करूंगी, मैं बच्चों से भी ठीक से बात नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ गलत किया. विच इज ओके, दे आर ओके विद देयर नॉर्मल लाइफ. मैं जितनी देर नहीं करती तो इट इज दैट क्वालिटी ऑफ थॉट जो मेरे अंदर फिर चलती जाती है. जिस दिन आपने डिसीशन लिया, हमारे पास एक भाई आया, उसने कहा मैंने कई सालों से अपनी मदर से बात नहीं की है. क्यों नहीं की? क्योंकि वो मदर ने पता नहीं मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसे ऊपर नीचे कर दिया. आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन, माई मदर इज इन अ लॉट ऑफ पेन, ही सेड, माई वाइफ इज इन अ लॉट ऑफ पेन. आई सेड, आज प्रोग्राम के बाद वाई डोंट यू ट्राई, आप जाके अपनी मदर से बात कर लो. ही सेइंग नो, आउट ऑफ द क्वेश्चन, मैं नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा गलत मेरे साथ किया. ऐसे दो ही तो चॉइस है, या तो फिर इसी तरह हम दर्द में चलते रहें, या फिर आप जाओ, आप बात कर लो. एंड ही वेंट आफ्टर द प्रोग्राम एंड ही स्पोक टू हिज मदर. हाउ डिफिकल्ट कुड दैट हैव बीन? हाउ डिफिकल्ट?
0: लेकिन अगेन आई विल बी टेकन फॉर ग्रांटेड, यू नो.
1: सी दैट अगेन,
0: दैट्स अ फियर
1: कि आप मुझे फिर से,
0: मैं अपने आप को ओपन कर रहा हूँ, वल्नरेबल कर रहा हूँ एक बार फिर.
1: दैट इज द प्रॉब्लम, कि जब हम इस तरह से कोई स्टेप लेते हैं हम सोचते हैं हम वल्नरेबल हो रहे हैं. एक्चुअली ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है. किसी ने मेरे साथ कुछ किया ऊपर नीचे और मैं फिर भी उनके साथ स्टेबिलिटी से बात कर सकूं, ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है?
0: दिस इज माई स्ट्रेंथ,
1: दैट्स ऑल. वॉट द, नोबडी कैन एक्सप्लॉइट स्ट्रेंथ. माई स्ट्रेंथ एंड माई वीकनेसेस आर माई प्रॉपर्टी. आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं. हमें ये लगता है कि हमें एक्सप्लॉइट किया जाएगा, कोई हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता. इफ माई लाइफ, माई स्टेट ऑफ माइंड इज इन माई कंट्रोल, मैं अगर जाकर बात करती हूँ उस सीनियर से या जिसे से भी, तो वो अगर मुझे अच्छा लगता है, दैट्स जस्ट मोर देन इनफ, दैट्स मोर देन इनफ. उसका गलत क्या हो सकता है रिजल्ट? आज दिन तक मैं दर्द में चल रही थी, अगेन डिफरेंट डेस्टिनी नो. See this brother, इतने साल से अपनी मदर से बात नहीं की, या इतने टाइम से आप अपने बॉस के अगेंस्ट होकर रोज वही ऑफिस में जा रहे हैं, उधर ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रति इस तरह की थॉट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपकी जीवन की क्वालिटी क्या है? और फिर इतना दर्द जो अपने अंदर भरा, इतनी बिटरनेस उस सीनियर के प्रति, वो सिर्फ उधर तक तो नहीं रहेगी, घर जाएंगे, वाइफ पर निकलेगा, वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकलेगा. आप अपनी जीवन की क्वालिटी क्रिएट कर रहे हैं. इट इज ओनली स्टार्टिंग विद योर थॉट्स. आज आप जाएं, वाइप आउट करें अगर अपने आप को, और कहें आई एम जस्ट गोइंग टू बी नॉर्मल, इनको जैसे बात करना है इनको बात करने दो, तो आप फॉरगिव किसको कर रहे हैं? अपने आप को दर्द से आप मुक्त कर रहे हैं. उनको नहीं कर सकते, उन्होंने गुस्सा करना है तो गुस्सा करना है, लेकिन अगर मैंने ये अपने आप को कह दिया कि मैंने फिर भी नॉर्मल रहना है, तो किसको बचाया?
0: अपने आप को.
1: अपने आप को बचाया, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन से बचाया, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से बचाया. जब घर जाओगे आज शाम को तो कैसे होगे? जस्ट बिकॉज यू डिसाइडेड टुडे कि आई एम नॉट गोइंग टू होल्ड एनीथिंग अगेंस्ट एनीबडी, आई एम गोइंग टू बी नॉर्मल. लेकिन फिर वो और डांटेंगे, डांटने दो ना, फिर और डांटेंगे तो क्या होगा? हम सोचते हैं हम नाराजगी शो करेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे, और अगर हम ठीक से बात करेंगे तो उनका तो व्यवहार, तो हम सारा दिन क्या कर रहे हैं? मैं नाराजगी शो करूंगी ताकि आप चेंज हो जाओ. लेट्स स्टॉप ट्राइंग टू चेंज.
0: यस, पीपल डोंट चेंज.
1: पीपल एंड पीपल विल चेंज अकॉर्डिंग टू देयर ओन जर्नी. इसी में ये बात आई कि अपने ऊपर ध्यान रखना. इसलिए हमने कहा अपने ऊपर ध्यान रखना. डेस्टिनी डजंट नेसेसरीली मीन जॉब एंड मैरिज एंड प्रॉप. डेस्टिनी मीन्स हाउ आई फील द होल डे इज माई डेस्टिनी. वेदर आई एम हैप्पी और वेदर आई एम सफरिंग, दिस इज माई डेस्टिनी द होल डे.
0: शिवानी, आज जो हमने बातचीत की है, हम चाहेंगे कि कुछ क्षण बैठ कर उस पर रिफ्लेक्ट करें, ताकि वो जो डिसीजन हमने लेना है जिस भी डायरेक्शन में जाने का, उसकी स्ट्रेंथ हमें मिल पाए.
1: श्योर. आई थिंक हर मॉर्निंग जैसे हम तैयार होते घर से बाहर जाने के लिए, तो जैसे कि हम शरीर की तैयारी करते, गाड़ी की तैयारी करते, सब चीज़ों की तैयारी करते, इस तरह से मन को तैयार करके निकले आज के दिन के लिए. और अभी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते, और इसको अगर सभी लोग हर रोज करें, 2 मिनट 3 मिनट भी निकाल कर अपने मन की तैयारी करें, रेडी फॉर द डे, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. लेट्स जस्ट सिट बैक कंफर्टेबली एंड अपने थॉट्स को देखने का प्रयास करें. मैं वो शक्ति जो सारा दिन घर का, ऑफिस का, लोगों का ध्यान रखती हूँ, मैं वो शक्ति जो इतने सारे कार्य करने के लिए इंस्ट्रूमेंटल हो, मेरी क्वालिटी क्या है, अपने आप को याद दिलाएं, आई एम दैट पावरफुल बींग, मास्टर ऑफ द सिचुएशन, मास्टर ऑफ द स्टेट ऑफ माइंड. मेरे आसपास चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कैसा भी व्यवहार करे, मेरी सोच फिर भी मेरी क्रिएशन है. टुडे एज आई सेट आउट फॉर द डे, लेट मी जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, आई एम दैट पावरफुल बींग, क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स. सिचुएशन इरिस्पेक्टिव, I will still create powerful, positive thoughts. Mera har sankalp shaktishali, shuddh aur positive hoga. Om Shanti.
0: Om Shanti. And thank you so much, Sister Shivani. Ab aap se bhi vida lena chahenge, lekin yahi kahenge ki happiness index ki jo baat karte hain, to wo hamare apne hi haath mein hai. फिर मुलाकात होगी. ओम शांति.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि राजकुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 23 अगस्त। और सही जवाब भेजने वाले हमारे दो भाग्यशाली श्रोता हैं, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से महेश पाल और जबलपुर से मनीषा साखरदांडे। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

श्रम मिट्टी में छिपे उस बीज की तरह है जो स्वयं को गलाकर दुनिया को हरियाली दे जाता है, और श्रमिक उस बरगद की तरह जो अपने हिस्से में तपती धूप रखता है और दुनिया को छांव बांटता है। किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति इन मेहनतकश हाथों में ही होती है जो अपने पसीने से उसके सपनों को आकार देते हैं, और जब इन्हीं हाथों को उनका अधिकार दिलवाने के लिए कोई आवाज उठती है तो इतिहास उसे एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन की तरह याद रखता है। भारत के श्रमिक आंदोलन को नई चेतना देने वाले एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे नारायण मल्हार जोशी, जिनके लिए मजदूरों की पीड़ा उनकी अपनी संवेदना बनी और उन्होंने श्रम को सम्मान दिलवाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। नारायण मल्हार जोशी का जन्म 5 जून सन 1879 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास स्थित गोरे गांव में हुआ था। ये समय भारत के लिए परिवर्तन की आहटों का समय था। देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और समाज अनेक असमानताओं के बोझ से दबा हुआ था। ऐसे समय में नारायण मल्हार जोशी का जीवन आकार ले रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा पुणे में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी चेतना का प्रमुख केंद्र था। सन 1901 में उन्होंने डेक्कन कॉलेज पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने अहमदनगर, मुंबई और पुणे के विभिन्न विद्यालयों में अध्यापन का कार्य आरंभ किया। इस दौरान वो तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन को ध्यान से देख और समझ रहे थे। उनके जीवन में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो राष्ट्रवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। गोखले जी की विचारधारा ने उन्हें बहुत गहराई से प्रभावित किया और सन 1909 में वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सक्रिय सदस्य बन गए। यहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि उनका जीवन देश और समाज की सेवा हेतु समर्पित होगा। मुंबई के कपड़ा मिल और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की दशा देखकर वो विचलित हो गए। बड़ौदा के महाराजा श्रीमंत सयाजी राव गायकवाड़ और कुछ अन्य लोगों के वित्तीय और नैतिक सहयोग से उन्होंने सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की, जिसके माध्यम से मजदूरों के लिए रात्रिकालीन विद्यालय खोले गए, पुस्तकालय बनाए गए, चिकित्सा शिविर लगाए गए तथा सहकारी समितियों का निर्माण हुआ। वो समझ गए थे कि केवल आजादी नहीं बल्कि भारत भूमि के उत्थान के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग के लोगों का उत्थान आवश्यक है।

समय की नदी आगे बढ़ रही थी और भारत के सामाजिक जीवन में भी अनेक परिवर्तन जन्म ले रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और देश के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरों का असंतोष चरम पर था। नारायण मल्हार जोशी ये जान चुके थे कि जब तक देश के मजदूर संगठित नहीं होंगे, तब तक वो मिल मालिकों और ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकार नहीं मांग सकते। इसी सोच के साथ 31 अक्टूबर सन 1920 को मुंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ऐतिहासिक प्रथम अधिवेशन हुआ। नारायण मल्हार जोशी इसके मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने लाला लाजपत राय और जोसेफ बैप्टिस्टा के साथ मिलकर इस संगठन की नींव रखी। लाला जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और नारायण मल्हार जोशी इस संगठन के प्रथम महासचिव चुने गए और उन्होंने सन 1929 तक इस पद पर रहकर भारतीय श्रमिक आंदोलन को दिशा दी। उस दिन केवल एक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था, बल्कि बिखरी हुई आशाओं को एक धड़कन मिली थी। मजदूरों के हितों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधायी शक्ति की आवश्यकता थी। इसे देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने सन 1921 में नारायण मल्हार जोशी को केंद्रीय विधानसभा का सदस्य मनोनीत किया। वो सन 1921 से 1947 तक लगभग 26 वर्ष लगातार इस सदन के सदस्य रहे। सदन के भीतर वो श्रमिकों की निर्भीक आवाज बनकर गूंजते रहे। नारायण मल्हार जोशी ने मजदूरों की आवाज को केवल भारत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने श्रमिकों की आवाज को वैश्विक मंच तक पहुंचाया। सन 1922 में जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सम्मेलन आयोजित हुआ। नारायण मल्हार जोशी इस सम्मेलन में भारतीय श्रमिकों के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए। इसके बाद वो कई बार अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय के सदस्य चुने गए, जिससे भारतीय श्रमिक आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। भारत की सीमाओं से निकलकर मजदूरों की आवाज अब वैश्विक मंच तक पहुंच रही थी। केंद्रीय विधानसभा में रहते हुए नारायण मल्हार जोशी ने कई ऐतिहासिक कानून पारित करवाए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय ट्रेड यूनियन अधिनियम 2026। इस कानून से पहले श्रमिकों के द्वारा संगठन बनाया जाना या अपनी मांगों के लिए हड़ताल करना एक अपराध माना जाता था, लेकिन नारायण मल्हार जोशी के अथक प्रयासों ने श्रम संघों को वो कानूनी मान्यता और सुरक्षा दी जिसने भारतीय श्रम इतिहास का भूगोल बदल दिया। इससे पहले सन 1923 में मजदूर मुआवजा अधिनियम को भी पारित करवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर दुर्घटना होने पर मजदूरों को मुआवजे का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके प्रयास अद्भुत थे, जैसे किसी ने वर्षों से बंद दरवाजों को खोल दिया हो। सबके हिस्से की रोशनी सब तक पहुंच सके, इसी दृढ़ संकल्प के साथ वो लगातार आगे बढ़ते रहे।

समय का चक्र निरंतर घूमता रहा और नारायण मल्हार जोशी की यात्रा नए पड़ावों से होकर गुजरती रही। भारतीय कारखानों, चाय बागानों और कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों की वास्तविक स्थिति की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने रॉयल कमीशन ऑन लेबर का गठन किया। नारायण मल्हार जोशी को इस उच्च स्तरीय आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया। उन्होंने पूरे भारत का व्यापक दौरा किया और एक ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार करने में मदद की, जिसने आगे चलकर भारत में न्यूनतम मजदूरी और काम के घंटे तय करने की नींव रखी। 1920 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय श्रमिक आंदोलन एक नए मोड़ पर खड़ा था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के भीतर एक नई विचारधारा का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। ये लोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए हड़ताल का समर्थन किया करते थे, जबकि नारायण मल्हार जोशी का मानना था कि श्रमिक संगठनों का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दांवपेच के बजाय शुद्ध रूप से मजदूरों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण होना चाहिए। वैचारिक मतभेदों की ये आंधी जब तेज हुई तो वर्ष 1929 के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने भारत के भावी राष्ट्रपति वीवी गिरी और दीवान चमनलाल जैसे मनीषियों के साथ मिलकर एक अत्यंत साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने AITUC से अलग होकर 1930 में इंडियन ट्रेड्स यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। उनका लक्ष्य सदैव स्पष्ट था। यही कारण है कि जब मजदूरों की एकजुटता का सवाल आया तो वो अड़े नहीं रहे, बल्कि लचीलापन अपनाते हुए सन 1940 में वो पुनः AITUC में शामिल हुए और इसके महासचिव के रूप में वो फिर से सक्रिय हो गए। कुल मिलाकर अपनी राह पर वो दृढ़ संकल्प के साथ चलते रहे। अपने सिद्धांतों से उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। राजनीति धारा में वो हमेशा निष्पक्ष रहे और जब कभी मजदूरों के हित की बात आई, उनके कल्याण की बात आई, उन्होंने सब कुछ छोड़कर श्रमिक कल्याण का पक्ष लिया। भारत के भावी संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए जब लंदन में प्रथम और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ तो नारायण मल्हार जोशी ने इसमें भारतीय श्रमिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लिया। यहां उन्होंने महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ मिलकर वंचित वर्गों के अधिकारों पर गहन विमर्श किया। नारायण मल्हार जोशी ने यहां इस बात की वकालत की कि स्वतंत्र भारत के नए संविधान में प्रत्येक नागरिक को वयस्क मताधिकार मिलना चाहिए तथा श्रमिकों के अधिकारों को मौलिक अधिकारों का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। देश की आजादी के बाद देश के नए औद्योगिक और श्रम कानूनों के निर्माण में वो सरकार के सबसे वरिष्ठ मार्गदर्शक और सलाहकार बने। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए 30 मई सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: हिरण बाकुनों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

19वीं शताब्दी का अंतिम दशक, जब भारत भूमि एक मौन ज्वालामुखी की तरह थी, ऊपर से चुप लेकिन भीतर धधकती हुई, एक सुलगता हुआ समय कि जब भारतीय स्वाधीनता संग्राम ने एक अत्यंत संवेदनशील और उग्र मोड़ ले लिया था। इस कालखंड में दो स्पष्ट धाराएं उभर रही थीं। एक का रवैया नर्म था, संवैधानिक दायरे में रहते हुए सुधारात्मक मार्ग था ये, और दूसरा रास्ता था सशस्त्र क्रांति का। इसके अग्रदूत थे चाफेकर बंधु और उनके अत्यंत निष्ठावान सहयोगी महादेव विनायक रानाडे, जो एक क्रांतिकारी छात्र थे तथा मात्र 20 वर्ष की आयु में भारत भूमि के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। वतन का राग कार्यक्रम में आज एक आत्मीय स्मरण इन्हीं महादेव विनायक रानाडे का। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद पुणे का ब्राह्मण समुदाय, विशेषकर चित्पावन ब्राह्मण समुदाय, अपनी राजनीतिक शक्ति खो चुका था, लेकिन उनकी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना अब भी अत्यंत तेज थी। 1870 के दशक में वासुदेव बलवंत फड़के के सशस्त्र विद्रोह ने महाराष्ट्र के युवाओं के भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया था। 1890 के दशक में पुणे वैचारिक संघर्ष का अखाड़ा बन चुका था। एक ओर सुधारवादी गुट सक्रिय था तो दूसरी ओर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में युवा आगे बढ़ रहे थे। ये विचारधारा स्वधर्म और स्वराज की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष संघर्ष को आवश्यक मानती थी। महादेव विनायक रानाडे इसी राष्ट्रवादी विचारधारा के गर्भ से निकले एक महान योद्धा थे। उनका जन्म सन 1878-79 के आसपास एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक रानाडे एक साधारण किंतु संस्कारवान व्यक्ति थे। महादेव विनायक रानाडे अपनी शिक्षा के दौरान ही पुणे के उस क्रांतिकारी प्रभाव में आ गए थे जो पुणे की तत्कालीन ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध पनप रहा था। युवा महादेव विनायक रानाडे की आंखों में अपने जीवन को लेकर कोमल स्वप्न नहीं थे, बल्कि उनकी आंखों में भारत की आजादी का संकल्प था। यही कारण है कि शिक्षा के साथ साथ उनका मन क्रांति की ओर झुकने लगा था।

महादेव विनायक रानाडे के क्रांतिकारी जीवन की औपचारिक शुरुआत हिंदू धर्म संरक्षण सभा के माध्यम से हुई थी। इस संगठन की स्थापना सन 1893-94 में चाफेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदू परंपराओं, संस्कृति और मंदिरों की रक्षा करना था। ये संगठन सार्वजनिक रूप से एक धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था के रूप में कार्य करता था, लेकिन गुप्त रूप से इसमें युवाओं को सशस्त्र विद्रोह के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। संगठन की सदस्यता अत्यंत कठोर नियमों के तहत प्राप्त की जाती थी। गीता और तलवार पर हाथ रखकर क्रांतिकारी शपथ लेते थे। ये शपथ केवल शब्द नहीं थे, ये उनके जीवन का व्रत था जिसका पालन वो हर हाल में करते थे। इस संगठन के प्रारंभिक और सबसे सक्रिय सदस्यों में से एक थे महादेव विनायक रानाडे। वो न केवल शारीरिक प्रशिक्षण में अग्रणी थे, बल्कि चाफेकर बंधुओं के बीच एक सेतु की भांति कार्य किया करते थे। ये मिलकर जैसे एक ही लक्ष्य के चार स्तंभ थे। इनकी गतिविधियां केवल शस्त्र तक सीमित नहीं थीं, ये जन जागरण का कार्य भी करते थे। संस्था शिवाजी महाराज और गणपति उत्सवों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रचार करती थी। इसके साथ ही धर्मांतरण का भी विरोध करती थी। ईसाई मिशनरियों को भारतीय संस्कृति के लिए खतरा मानते हुए उनका विरोध करती थी। महादेव विनायक रानाडे का युवा मन केवल आक्रोश से नहीं भरा था, बल्कि वो प्रतिशोध की ज्वाला भी बन चुका था। उनके जीवन का लक्ष्य था अंग्रेजी राज को भारत से उखाड़ फेंकना। इसी बीच एक महामारी ने ब्रिटिश राज का अत्यंत क्रूर चेहरा जनता के सामने रख दिया। सन 1896 में पुणे में प्लेग फैला। धीरे धीरे इसने एक महामारी का रूप ले लिया। फरवरी 1897 में ब्रिटिश सरकार ने विशेष प्लेग समिति का गठन किया। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी W.C. रेंड को इसका अध्यक्ष बनाया गया। रेंड का दृष्टिकोण विशुद्ध रूप से सैन्य कार्रवाई के पक्ष में था। उसका रवैया अत्यंत संवेदनहीन रहा। रेंड ने प्लेग नियंत्रण के लिए डॉक्टर्स के स्थान पर 800 से अधिक ब्रिटिश सैनिकों को पुणे की गलियों में उतार दिया। इन सैनिकों ने प्लेग की जांच के नाम पर जो कार्रवाई की वो अत्यंत घृणित थी। ये सैनिक आधी रात को लोगों के घर में घुस जाते और घर के सामान को नष्ट कर देते। ये सैनिक पूजा घरों में भी घुस जाते, पूजा स्थान को अपवित्र करते, धार्मिक प्रतीकों का तिरस्कार करते, मूर्तियों को तोड़ते और उन्हें अपमानित करने का कृत्य करते। प्लेग जांच के नाम पर सैनिक महिलाओं को निर्वस्त्र करवाते और उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जाता। लोगों को शिविरों में भेज दिया जाता और अत्यंत अमानवीय व्यवहार उनके साथ किया जाता था। इन घटनाओं ने महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं के मन में प्रतिशोध की ज्वाला जला दी।

प्लेग नियंत्रण के बहाने रैंड के अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मच गया था। अनेक राष्ट्रीय नेताओं ने इसकी बुलंद स्वर में आलोचना की। महादेव विनायक रानाडे और चाफेकर बंधुओं ने रैंड को अत्याचारी और धर्म का शत्रु घोषित कर दिया तथा उसे समाप्त करने की योजना बनाई। 22 जून सन 1897 को रानी विक्टोरिया की हीरक जयंती के अवसर पर पुणे के गवर्नमेंट हाउस में एक समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें रैंड को भी शामिल होना था। क्रांतिकारियों ने रैंड की हत्या के लिए इसी दिन को चुना। क्रांतिकारियों ने सारी आवश्यक जानकारियां जुटाई। वासुदेव हरि चाफेकर ने रैंड की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी। महादेव विनायक रानाडे ने प्रमुख सहायक, क्रियान्वयनकर्ता और निगरानी की जिम्मेदारी संभाली। 22 जून को सभी क्रांतिकारी नियत समय और स्थान पर अपने अपने दायित्वों के साथ तैनात हो गए। जैसे ही रैंड की बग्घी निकली, दामोदर चाफेकर ने संकेत दिया। वो बग्घी के पीछे दौड़ने लगे और बग्घी के पर्दे हटाकर रैंड के सिर पर गोली मार दी। रैंड गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में 3 जुलाई को उसकी मृत्यु हो गई। रैंड की बग्घी के ठीक पीछे उसके सैन्य रक्षक लेफ्टिनेंट आरिस्ट की बग्घी भी थी। बालकृष्ण चाफेकर ने उस पर गोली चलाई और वो घटनास्थल पर ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। महादेव विनायक रानाडे हथियार बंद होकर निगरानी करते हुए वहां मौजूद थे। उन्होंने रैंड और आयरस्ट की हत्या में सक्रिय सहयोग दिया। अंधेरे और उत्सव के शोर का लाभ उठाते हुए क्रांतिकारी वहां से सुरक्षित निकल गए। इसे 1857 के बाद भारतीय उग्र राष्ट्रवाद की पहली बड़ी घटना के रूप में देखा गया। यह घटना ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक जबरदस्त झटका थी। ब्रिटिश प्रशासन ने इसे बहुत गंभीरता से लिया तथा पुणे में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू की, लेकिन क्रांतिकारी अब तक पकड़े नहीं गए थे। इसी बीच द्रविड़ बंधु गणेश शंकर द्रविड़ और रामचंद्र शंकर द्रविड़, जो पहले से ही चाफेकर बंधुओं के साथ थे, उन्होंने 20,000 रुपए के लालच में पुलिस को सारी जानकारी दे दी। इसी आधार पर दामोदर हरि चाफेकर को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने स्वीकार किया कि हिंदू धर्म के अपमान और मूर्तियों को तोड़े जाने का बदला लेने के लिए उन्होंने रैंड की हत्या की। 18 अप्रैल सन 1898 को उन्हें फांसी दे दी गई। बालकृष्ण हरि चाफेकर कुछ समय तक फरार रहे, लेकिन अंततः 1899 में वो भी पकड़े गए। द्रविड़ बंधुओं के विश्वासघात ने महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर को क्रोध से भर दिया। 9 फरवरी सन 1899 को महादेव विनायक रानाडे और वासुदेव चाफेकर ने खांडो विष्णु साठे के साथ मिलकर द्रविड़ भाइयों को समाप्त कर दिया। उसी रात उन्होंने पुलिस के एक प्रमुख मुखबिर और एजेंट रामा पांडू को भी मारने का प्रयास किया था, लेकिन वो पकड़े गए। गिरफ्तारी के बाद मुकदमा चला। महादेव विनायक रानाडे ने मुकदमे के दौरान जो साहस दिखाया, वो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने अपनी याचिका में खुलासा किया कि पुलिस ने उन पर अमानवीय अत्याचार किए। पुलिस चाहती थी कि वो स्वीकार करें कि रैंड की हत्या के पीछे तिलक जी का हाथ है, लेकिन अनगिनत यातनाएं सहने के बावजूद उन्होंने तिलक जी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का नाम नहीं लिया। मुकदमे का फैसला आया। किशोर क्रांतिकारी खांडो विष्णु साठे को 10 वर्ष कारावास की सजा दी गई और शेष 3 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। 8 मई सन 1899 को वासुदेव हरि चाफेकर को, 10 मई को महादेव विनायक रानाडे को और 12 मई को बालकृष्ण हरि चाफेकर को पुणे की यरवदा जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। नमन ऐसे अमर बलिदानियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हर्ट टच.
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बहुत संकरी और पतली गली को देखा है? एक ऐसी तंग गली जिसमें मुश्किल से केवल एक ही व्यक्ति सीधा खड़ा होकर निकल सकता है.

अगर उस गली में कोई इंसान अपने साथ दो बड़े बड़े झोले लेकर या किसी दूसरे साथी का हाथ पकड़कर एक साथ निकलना चाहे तो वह कभी पार नहीं हो पाएगा। वहां से गुजरने की पहली शर्त ही यही है कि आपको बिल्कुल अकेले और सीधा होना पड़ेगा। अध्यात्म का मार्ग भी ठीक वैसे ही एक संकरी गली है, लेकिन हमारी तरकीबें बड़ी अजीब हैं। हम मंदिर, मस्जिद या ध्यान में बैठते तो हैं, ऊपर से ऐसे दिखाते हैं कि हम ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह लीन हैं, लेकिन हमारे भीतर कहीं ना कहीं कोई सांसारिक चालाकी, कोई स्वार्थ या कोई वासना छिपी रहती हैं। हम सोचते हैं कि इस भीतरी चोर को कोई देख नहीं रहा। कबीर साहब आज हमारे इसी आत्मछल का पर्दाफाश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह मर्मभेदी सूत्र। कबीर सेरी साकड़ी चंचल मनवा चोर, कबीर सेरी साकड़ी चंचल मनवा चोर, गुन गावे लेलिन होई कछु एक मन में और।

0: चंचल मनुवा चोर गुन गावे लैलिन होई कछुन कछु एक मन में और रे साधो कछु एक मन में और। श्रोताओं, कबीर साहब साधना के मार्ग की संकीर्णता और मन की चालाकी को उजागर करते हुए कहते हैं, कबीर सेरी साकड़ी, वह जो परमात्मा के मिलन की सेरी यानी गली है, वह अत्यंत साकड़ी यानी तंग और संकरी है। वहाँ अहंकार और कपट के साथ प्रवेश करना असंभव है। चंचल मनुवा चोर, पर विडंबना देखिए, इस गली में प्रवेश करने वाला जो हमारा मनुवा यानी मन है, वह बड़ा चंचल है। स्वभाव से एक चोर की तरह है, जो लगातार ईश्वर की नज़रों से बचकर अपनी वासनाओं को तृप्त करने की फिराक में रहता है। यह चोर मन क्या चालाकी करता है? अगली पंक्ति में कबीर कहते हैं, गुन गावे लेलिन होई। बाहर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि यह मन परमात्मा के गुण गा रहा है, कीर्तन कर रहा है और भक्ति में पूरी तरह लैलीन यानी डूबा हुआ है। कछु एक मन में और, लेकिन कबीर साहब उसके भीतर की चोरी पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि ऊपर की इस लैलीनता के पीछे इसके मन में यानी हृदय के किसी अंधेरे कोने में कछु और ही चल रहा होता है। कोई मान प्रतिष्ठा की चाह, कोई धन का लालच या किसी से बदला लेने की भावना छिपी होती है। यह दोहा चित्त की एकाग्रता और पूर्ण प्रामाणिकता का महासूत्र है। वेदांत दर्शन में परमात्मा को अंतर्यामी कहा गया है, यानी वह जो हमारे वचनों को नहीं बल्कि हमारी नियति और भीतरी चेतना को देखता है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि परमात्मा को शब्दों या कीर्तनों के बाहरी आडंबर से रिझाया नहीं जा सकता। जब तक मन में द्वैध है यानी मुख पर हरि का नाम और भीतर संसार का काम, तब तक आप उस संकरी गली को पार नहीं कर सकते। उस गली को पार करने के लिए मन का पूरी तरह से शुद्ध, पारदर्शी और निष्कपट होना अनिवार्य है। जहाँ थोड़ी भी और यानी दुविधा या वासना बची है, वहाँ परमात्मा का प्रकाश ठहर ही नहीं सकता। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा आंखें बंद करके अपने इस चंचल मनुवा चोर की तलाश कीजिए। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम किसी की भलाई करते हैं या जब हम समाज को अपनी धार्मिकता दिखाते हैं, तो क्या हमारे भीतर सचमुच निस्वार्थ प्रेम होता है? या फिर उस गुण गाने के पीछे हमारे मन में कछु और यानी कोई छुपा हुआ स्वार्थ काम कर रहा होता है? आज कोशिश कीजिए इस भीतरी चोर को पकड़ने की। अपने आचरण में और अपनी प्रार्थना में पूरी तरह ईमानदार बनिए। जो बाहर है वही भीतर भी होने दीजिए। मुख और मन के इस फासले को मिटा डालिए। जब आपका मन पूरी तरह खाली और निष्कपट होकर उस राम नाम में लीन होगा, तभी वह इस संकरी गली को पार कर पाएगा, उस अनंत चैतन्य सत्ता से एक हो सकेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम।
1: आप सुन रहे हो रेडियो मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
2: बात तथागता तुना ध्यास तुना अभ्यास गहरा खोल, तुना या खराना सोदना आडे राग लोभ खार ज्या ज्या आडकाठी बनी उन्हात त्यासले कापत घ्या आणि उभा राहत घ्या। बा तथागता शाक्य कोली असना पाणीनं संकट मिटणं हाही आनंद वार्ता तुना लागे उनी म्हणशिनी, तुना सोदना परवास थांबी का? हां बिलकुल नाही, तू विचार करा पलगडी आखो भिडना नवा उमेद थै सोदलेवाले खरांना सोद गुंता ते समजी लेवा गुंता। राजा बिंबी सारूना तुन देख न रूप दखी तू भटकंतीवाला नैश्य असं बोलना, तुन देखना शरीरना 32 लखने त्या बलदंड दंडे त्या एक लाईन थै रचेल दात आणि सोनासारखी कातडी। बट्ट राजाना माईक सोडाव रस्ता बट्टा सुखेतुना पायशे लोयन लेथीन त्यावर। तथागता त्यांना बोलावरे बोलना जगमा जगमा दूग बानगडी तंटा रावा बाजत माले त्या सुखनी आवनी। राजा बिंबिसार आय आय की भयान हुई गया, अरे तुना आई ज्ञान पूर्व वावा बाजत माले भेट असं बोलना। भटकंतीले इंगेल सिद्धार्थ भृगुरीशीना आश्रमे घ्या, पिढी जात तप साधनाले डोळ्या भरी दक, वय सालीले आलार कलामना आश्रमे भी तू घ्या, उद्दकापुर उद्दका रामपुत्ताले भेटना बरा माठाना इचार करी गौतमना प्रवास सुरू झाया। त्यांनी दख समाधी रस्ताना शिक्षण प्राणायाम ध्यान समाधी बैरागीना कडक अभ्यास तू कया, शरीरले त्रास दिना काटासवर जपाड थंडीना दिन मा कुडकुडना, उन्हायामा ऊनमा आंगले बाह्य पावसायामा पाणीमा भिजना, तू खुदले थकाड पण या समदा रस्ता शरीरले थकाडणारा मन मातल्या वासना असले मूठ माती देवा वाचते कठीण, ज्ञान पै ध्यान पै गंजच दुर्ण्या। बा तथागता तुले बेटा गुंता विचारसन्या तत्वज्ञान्या चर्चा कितल्या कृषींना सांगे, तूच आपली काढात मंतर तंतर करम कुभाण आंधी श्रद्धा आणि श्रद्धा मातली दरी आणि भेदरेषा निसर्गमान न्याऱ्या न्याऱ्या गोष्टीसनी वनारी पुंजा, ऋषीसनं तत्वज्ञान सांगस खरं सोदा गुंता, पुरावा जोजेल तवयच खरं खरं मानाई त्या गुंतास दोन रस्ता खराना तू सांगात, एक ज्ञान दुसरा रस्ता अनुमान, बाकीना बट्टा बरमना भोप्या करम कुभाण आंधी श्रद्धाना थैथयाट, भट्टा येडा चाया आणि दात काया ज्यांना त्यांना मन जोगत्या बामनेसन्या पुराण पोथ्या, तुना ज्ञान रस्तामा तुले बिनकामन्या वाटण्यात, येद मातला मंतर आणि पुराणेस मातलं तंतर तुना ध्याने वायबार। बात तागता तुना बराबरीना कालमा पुरण काश्यप होता आक्रिया वाद मांडणारा करमना आत्माना वरे काहीच परमान व्हत नाही असं सांगणारा, हा त्या करानी दुसऱ्यांना हाते करानी, हा त्या करानी दुसऱ्यांना हाते करानी चोऱ्या मारा दरोडा टाकाना पराई बाईशी बैजबरी खोटं बोलानं, या बठ्ठास मातीन पाप लागत नाही आत्माले आणि पुण्य बी लागत नाही मराबाजत काहीच मागे।